0: किट धा धिंता धकिटिक टकिटिक किट धा धिंता
1: भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई
0: धरतिक धर

हर पल जिंदगी का बस धुआं है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमसा।